जगह जगह था परी फली का गेल मगटे को माप्रो जेले माटु मांगो कादांगो माया कुलांजा इन सुरा बरोला